प्रीतम मोहे लया मन मेरा, पाया कर्म विधाता, सदगुर सेव सदा सुख पाया, हर वस्या मन मुरारे। नानक मेल लई गुरे अपना, गुर कै शब्द सवारे, सुही महला तीजा, सोहेलड़ा हर राम नाम, गुर शब्दी विचारे राम, हर मंतनो गुरमुख बीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी, आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत समाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ, नानक कृपा तारे, सोहेलड़ा हर राम नाम, गुर शब्दी विचारे, हम नीवी प्रभ अतूचा, क्यों कर मिलिया जाए राम, गुर मेली बहु कृपा धारी, हर कै शब्द सुभाए राम, मेरे शब्द सुभाए आप गवाए, रंग सो रलिया माण, से सुखाली जा प्रभ पाया, हर हर नाम समाणे, नानक सोहागण सावड भागी, जे चले सतगुर पाए, हम नीवी प्रभ अत ऊचा, क्यों कर मिलिया जाए राम, घट घटे सबना विच एको, एको राम पतारो राम, एक ना प्रभ दूर वसै, एक ना मन आधारो राम, एक ना मन आधारो सृजन हारो, वड भागी गुर पाया, घट घट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे अंध हो अमन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो, घट घटे सबना विच एको, एको राम पतारो राम, गुर सेवन सतगुर दाता, हर हर नाम समाया राम, हर धूड़ देवो, घट घटे सबना।

पापी मुत कर आए आप गवाए नहीं कर पाया वासा विवेक बुद्धि सुख रैन विहानी गुरमत नाम प्रगासा हर हर आनंद भया दिन राती नानक हर मीठ लगाए गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाए राग सूही महला चौथा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख में लाए अवगण विकणा गुण रवा बलराम जियो हर हर नाम ते आए गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो गुरबाणी सब मीठी लागी पाप विकार गवाया हों मैं रोग गया पो पागा सहजे सहज मिलाया काया सेज गुर शब्द सुखाली ज्ञान तत् कर भोगो अंदन सुख माने नित रलिया नानक तुर संजोगो सत संतोख कर पाओ कुड़म कुड़म आई आया बलराम जियो संत जना कर मेल गुरबाणी गावाइया बलराम जियो बाणी गुर गाई परम गत पाई पंच मिले सोहाया गया क्रोध ममता तन नाठी पाखंड परम गवाया हम मैं पीर गई सुख पाया आरोगत पय शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता नानक गुणी गहीरा मन मुख विछड़ी दूर महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो कूड़ कपट कमावै महा दुख पावै विन सतगुर मग ना पाया उजड़ पंथ प्रमै गावारी खिन खिन तके खाया आपे दया करे प्रभ दाता सतगुर पुरख मिलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले नानक सह सवाए आया लगन गणाए हिरदय तनो माहिया बलराम जियो पंडित पांदे आन पति बहवा चाहिया बलराम जियो पति वाचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने कर आए गुणी ज्ञानी बहमता पकाया फेरे तत् दिवाए वर पाया पुरख्या गामा गोचर सद नवतन बाल सखाई नानक कृपा करके मेले विछड़ कदे ना जाई सूही महला चौथा हर पहलड़ी ला परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ाओ पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ो हर नाम ते आवो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुर गुर पूराया राधो सब किल विख पाप गवाया सहजानंद।

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा। नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हवारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हाँ बल जाई लख लख लख बरिया जिन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकर से मन माना। प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला। कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवां साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंधप।

अब चल नगर गोबिंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए, करता है आप वसाया राम, करता है आप वसाया सर्व सुख पाया, पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे पूर्ण परमेश्वर, कार्य आया रासे, प्रभ आप स्वामी अपे आपे रखा, आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन एहो थान सुहाया, घर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम आराध है, कटिया जम की फासी राम, काटी जम फासी प्रभ अविनासी, हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख माणे रलियां, दुख दर्द भ्रम नासी, शब्द सवारे सतगुर पूरै, नानक सदबल जासी, दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वड्डी वड्याई राम, आद जुगाद भगतन का राखा, सो प्रपया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला, दै दिस पूर रहया जा स्वामी, कीमत कहन ना जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अब चल नीम रखाई, ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज भगत पव पंजन, अनहद वाजे तुनिया राम, अनहद चुनकारे तत विचारे, संत गोष्ठ नित होवै, हर नाम आराधै मैल सब काटै, किलवे सगले खोवै, तह जन्म न मरना आवन जाना, बहुन न पाइया जोनिया, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इच पुनी है, सूही महला पंजवा, संता के कार्य आप खलोया, हर कम करावन आया राम, तरत सुहावी तार सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, पूर्ण पुरख अचुत अविनासी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया, नाम निद सिद्ध रिद दीने करते, तोट न आवै काई राम, खात खर्चत बिलशत सुख पाया, करते की दास सवाई राम, दास सवाई ने खुट न जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिघन सगले उठ नाठे, दुख न नेड़े आया, सांत सहज आनंद कनेरे, बिनसी भूख सवाई, नानक गुण गावै स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम, जिसका कार्य तिन्ही किया, मानस क्या वेचारा राम, भगत सोहन हर के गुण गावै, सदा करै जयकारा राम, गुण गाए गोविंद अंध उपजे, साध संगत संग बनी, जिन उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी, आठ साठ तीर्थ पुन किरिया, महा निर्मल चारा, पतत पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा, गुण निधान मेरा प्रभ करता, उसत कौन करी जय राम, संतां की बेनती स्वामी, नाम महारस दी जय राम, नाम दी जय दान की जय, बिसर नाही एक खिनो, गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाइए अंदिनो, जिस प्रीत लागी नाम सेती, मंतन अमृत पीजै, बिनवंत नानक इच पुनी, पेख दर्शन जीजै, राग सुही महला पंजवा, शंत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हौ संभल थकी जी, ओह कदे ना बोले कौरा,
कौड़ा बोल न जानै पूर्ण भगवानै औगुण को ना चितारे। पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्नै कहले। घट घट वासी सर्व निवासी नेरै ही ते नेरा। नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हां बिसम भई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी। हां चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा। तिस जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मध प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई। चरण कमल जप सागर तरिया भवजल उतरे पारा। नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा। हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो। गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो। मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे। सहज सुख आनंद कनेरे हमें बिंठी गाठे। सब कै मद सबहू ते बाहर राग दोख ते न्यारो। नानक दास गोबिंद सरण आई हर प्रीतम मनै सदारो। मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर पाया। सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया। प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरै ना आवै जाए। धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए। स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन ध्याया। नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की। श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा।

0: क्या किया है, जरा हम भी तो जाने।
1: जन जन पानी, ग्राम सेवा, सनातन विद्या, अन्न वस्त्र दान, स्नेह साकार, तन मन सेहत।
0: वाह क्या बात है, जरा इनके बारे में और सुनाएंगे।
1: साई कीर्ति का वर्णन क्या शब्दों से।

भगवान, यू हैव टॉट अस दैट ज्वेल्स आर मेनी बट गोल्ड इज वन, काउज आर मेनी बट द मिल्क इज वन, प्रेयर्स मे बी डिफरेंट बट गॉड इज वन, ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेयर्स रीच यू अलोन भगवान. हियर इज अ सॉन्ग बेस्ड ऑन योर टीचिंग्स emphasizing the underlying unity of all religions.